0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने रोटी और मछली के चमत्कार पर चिंतन किया और विश्वासों को याद दिलाया कि ख्रिस्त से मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 अगस्त को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: जब हम सुसमाचार पाठ सुनते हैं तो हम अक्सर यीशु के चमत्कारों को सुनते हैं। वे ऐसे कार्य हैं जो हमारे प्रति उनके विशेष समर्पण को दिखाते हैं, अर्थात उस मुक्ति को जिसको वे दुनिया में लाते हैं। प्रभु को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जीवन को अर्थ प्रदान करता और बुराई एवं पाप से मुक्ति दिलाता है। चमत्कारों के गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, अंधे को दृष्टि एवं बहरे को श्रवण देकर ख्रिस्त न केवल चमत्कारी कार्य संपन्न करते बल्कि सभी के लिए घोषणा करते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस तरह आज का सुसमाचार पाठ इस बात की गवाही देता है कि यीशु न केवल उन लोगों को अर्थ प्रदान करते जिनमें इसकी कमी है, बल्कि वे हमें भी अच्छी चीजों से भर देते हैं। बहरा जो फिर सुनने लगा, यीशु उसके लिए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। अंधा जो फिर देखने लगा, उसके लिए मुक्ति के महान कार्य को प्रकट करते हैं जो उसके लिए किया गया है। उसी तरह यीशु उन लोगों को भोजन देते हैं जो भूखे हैं। निर्जन प्रदेश अर्थात जब हम आवश्यकता में हैं, तो यीशु जीवन की रोटी हैं। रोटी का चमत्कार हमें दिखाता है कि यीशु के साथ मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये संख्या दिखाता है कि ईश्वर का दान सभी के लिए है और हमारे लिए उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। संत पापा ने कहा,
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: प्यारे मित्रों, ख्रिस्त सचमुच मानवता की भूख मिटाते हैं, सत्य और जीवन की हमारी भूख। उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि जब बांटा जाता है तो कुछ भी बेकार नहीं जाता। दूसरी ओर जमा करना और बर्बादी एक ही बुराई के दो पहलू हैं। लालच आत्मा की वह बीमारी है जिससे अर्थ खोने लगता है, क्योंकि समृद्धि व्यक्ति को मतवाला बना देता है उस हद तक कि वह उन लोगों को भूल जाता जो भूख से बिलखते और प्यास से रोते हैं, और इसलिए सड़ती हुई चीजों की अमीरी के सामने उन लोगों के फैले हुए हाथ खड़े हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों के जले हुए घर जिनके पास शांति नहीं है। संत पापा ने दुनिया की वर्तमान स्थिति की याद करते हुए कहा, युद्ध के निर्जन प्रदेश एवं अहंकार का सामना करते हुए हम प्रभु की दया को देखें, जो स्वर्ग की ओर नजर उठाते, धन्यवाद की प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और उन्हें अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे भीड़ को बांट सकें। संत पापा ने कहा, उदारता के इस चमत्कार में हम यीशु के कार्यों की विशेषता को पाते हैं जिनकी पराकाष्ठा अंतिम ब्यारी में है, जब ईश्वर के बेटे ने मानव जाति में हमारे भाई के रूप में अपनी जान दे दी। जब हम यूखरिस्त की कृपा को ग्रहण करते हैं तो आइए हम अपने रोज के कामों में इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए खुद को तैयार करें, जिसकी शुरुआत परिवार और दोस्तों के साथ खाने की मेज पर भोजन को आशीष देते हुए होती है। यीशु के साथ छुट्टियां भी भाईचारे की शांति का समय बन सकती है अगर हम जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, हम कुंवारी मरियम हमारी प्यारी माता से प्रार्थना करें कि वे हमें उदारता में बढ़ने में मदद करें ताकि कोई भी अपने दैनिक आहार से वंचित ना रहे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने देश विदेश की विभिन्न घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सेउटा की खतरनाक हालत देखकर परेशान हूँ। स्पेन का स्वायत्त शहर सेउटा, जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है और मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है, एक बड़े आप्रवासन संकट का सामना कर रहा है। विगत दिनों हजारों लोगों ने मोरक्को के इस इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिससे जगहें भर गई हैं, जिससे स्पेन को और सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इस संकट एवं समुद्र के रास्ते पार करने की खतरनाक कोशिशों के बीच कम से कम 67 लोगों की जान चली गई। रॉयटर के मुताबिक अधिकांश लोग समुद्र में डूब गए या अफरा तफरी के दौरान कुचल कर मर गए। संत पापा ने कहा, अफ्रीका की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शांति, स्थिरता और न्याय का हल मिल सके। उन्होंने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म हों और झगड़ों का कूटनीतिक हल मिल सके। आइए हम दुश्मनी के शिकार सभी लोगों को याद करें, खासकर सबसे कमजोर और सबसे लाचार लोगों को, बच्चे, बूढ़े और बीमार। प्रभु उन लोगों को आराम दें जो परेशान हैं, और उन लोगों को आशीष प्रदान करें जो सहायता और सांत्वना लाने के काम करते हैं। इसके बाद संत पापा ने सप्ताह के अंत में प्रायश्चित दंड मोचन के अवसर को याद किया और विश्वासियों को इस महान आध्यात्मिक वरदान के लिए धन्यवाद देने और इसे संजोए रखने के लिए आमंत्रित किया। इन दिनों को असीसी के दंडमोचन के लिए समर्पित किया गया है, जो पारंपरिक रूप से असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिसे पाप शिका संस्कार एवं पौत्र मिस्सा में भाग लेकर तथा किसी पल्ले या फ्रांसिस्कन चर्च में जाकर विश्वास के धर्मसार प्रभु की विनती, प्रणाम मरियम और संत पापा एवं उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करके प्राप्त किया जा सकता है। पोप ने कहा, ये दिन असीसी की माफी के रूप में मनाए जाते हैं। संत फ्रांसिस को यह दंडमोचन 1216 को पोप होनोरिस तृतीय से मिला था, या उन्हें तब मिला था जब उन्होंने पोचुंकुला में प्रार्थना करते हुए यीशु और मरियम को दूतों से घिरा हुआ देखा था। संत पापा ने कहा,
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono.
0: आइए हम इस महान वरदान के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें और इसे संभाल कर रखें, खासकर असीसी के संत फ्रांसिस की 800वीं वर्षगांठ पर, जिसकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1226 को पोचुंकुला में हुई थी। असीसी के क्षमा 1216 से ही हो रही है, जब यीशु ख्रिस्त कुंवारी मरियम और दूत संत फ्रांसिस के सामने छोटे से प्रार्थनालय में आए थे। यह चैपल फ्रांसिस ने इटली के शहर असीसी में बनवाया था। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi romani pellegrini provenienti da vari paesi.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti auguro una buona domenica.

वाले जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक उम्ब्रियन शहर में होने वाले फ्रांसिस्कन युवा मीटिंग कार्यक्रम के संयोजकों में से एक हैं, ने वाटिकन मीडिया को इन दिनों के प्रोग्राम और मकसद के बारे में बताया, जो दूतों की मरिया महागिरजा घर में संत पापा लियो 14वें के मिसा समारोह के साथ खत्म होगा। गुरुवार 4 अगस्त को असीसी में संत पापा लियो 14वें का प्रेरितिक दौरा युवाओं के लिए खास तौर पर रखी गई 4 दिनों की सभाओं, बहसों और कार्यशालाओं का अंत करेगा। संत पापा उनके सवालों का जवाब देंगे और पौत्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे एक औसत जिंदगी से समझौता न करें, जैसा उन्होंने एक साल पहले तोरवेरगाता में युवा जुबली के दौरान किया था। फ्रायर लुका ने बताया कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक 18 से 33 साल के हजारों यूरोपियन युवाओं को संत फ्रांसिस के शहर में लाएगा, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह महसूस करना कितना दुखद है कि उन्हें अक्सर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती है और इस उम्र में उन्होंने पहले ही सपने देखना बंद कर दिया है। 38 साल के फ्रायर माइनर ने वाटिकन मीडिया को बताया कि संत पापा लियो 14वें जैसे किसी बड़ी हस्ती से मतलब की बातें सुनना कितना जरूरी है, जो युवाओं और जिंदगी की उस भरपूरता के बीच पुल बना सके जिसे वे हमेशा समझ नहीं पाते, और संत फ्रांसिस जैसे पवित्र बेचैनी के मॉडल को देखना कितना मददगार है जो आज के युवाओं से समकालीन के तौर पर बात कर सकते हैं। उधर बोस्निया और हर्जेगोविना के तीर्थालय में आयोजित युवा समारोह ब्लादी फेस्ट के उद्घाटन के लिए राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक संदेश में संत पापा लियो 14वें ने युवाओं से क्षणिक खुशी के भ्रम में न आने का आग्रह किया। आसान और तुरंत खुशी के वादे आकर्षक होते हैं, लेकिन वे अक्सर कोई गहरी छाप छोड़े बिना फीके पड़ जाते हैं। जो बचता है वह गहरे सवाल, इंसान के दिल में रहने वाली चिंताएं और हमेशा रहने वाली खुशी की चाहत। इन्हीं कमजोरियों से ईश्वर से मिलकर विश्वास का एक असली सफर शुरू हो सकता है। वे हर दिल को शांत करते हैं और हमेशा नई शुरुआत की ताकत देते हैं। यही वह संदेश है जो संत पापा लियो 14वें ने 73 देशों के युवाओं को दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा समारोह के उद्घाटन के लिए मेजुगोरिया में एकत्रित हुए थे। 1989 से शुरू हुआ यह समारोह हर साल यूखरिस्तीय समारोह संत जेम्स पल्ली के बाहरी वेदी में होता है। उधर ईरान पर अमेरिका का हमला, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया गया था, होने वाला माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर के कहने पर इसे वापस ले लिया, जिन्होंने बातचीत से हल निकालने की बात कही थी। पार्टियों के बीच बातचीत आज फिर से शुरू होगी और सबसे पहले हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और फिर देश के परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाशिंगटन और तेहरान 17 जून को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह वह ज्ञापन है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समझौते के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में है, जिसे मध्यस्थ संदर्भित करना चाहते हैं, विशेष रूप से होर्मुज के मुद्दे पर। युद्ध से पहले सभी जहाज स्वतंत्र रूप से पारगमन कर सकते थे, फिर ईरान ने संघर्ष के दौरान इसे बंद कर दिया और नियंत्रण बनाए रखने और टोल एकत्र करने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय इस्लामी हथियारबंद दलों के खिलाफ प्रदर्शन को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में पुलिस अधिकारियों और आम लोगों समेत कम से कम 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार हमलावर ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर रोके जाने पर उसने बिल्डिंग के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने विस्फोटक जैकेट में धमाका कर दिया। मरने वालों में कम से कम 5 पुलिस अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रपति आशिफ अल जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उधर रविवार

2 अगस्त को सीबीसीआई बायो एथिक्स फोरम द्वारा कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेस मांडर में कैथोलिक बायो एथिक्स प्रसार कार्यशाला को सीसीबीआई बायो एथिक्स फोरम के डायरेक्टर फादर चार्ल्स डेविड ने संचालित किया। यह फोरम देश भर के कैथोलिक बायो एथिक्स को बढ़ावा देने और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हॉस्पिटल एथिक्स कमेटियों की स्थापना को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक फादर सीजो कुनेल ने प्रोफेशनल और क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया जो काबिलियत को दया, ईमानदारी और सुसमाचार के मूल्यों के साथ मिलाते हैं। सत्र में मानव गरिमा, नैतिक फैसले लेने, प्रजनन नैतिकता, जीवन के अंतिम क्षणों में देखभाल, सामाजिक न्याय और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल के मिशन पर कैथोलिक शिक्षा की जांच की गई। आपसी बहस, चर्चाओं और केस स्टडीज से प्रतिभागियों को असल जिंदगी के स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिली, जिसमें खासतौर पर करुणामय एवं मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और आज की बायोएथिकल चुनौतियों पर सवाल उठाए। कई लोगों ने व्यवहारिक केस आधारित तरीके की तारीफ की और अपनी भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल मिनिस्ट्री में मानव गरिमा की रक्षा करने, करुणामय देखभाल देने और नैतिक समझदारी दिखाने के लिए एक नई प्रतिबद्धता दिखाई। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरिना एमएमएस के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला खत्म हुई और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह में।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने रोटी और मछली के चमत्कार पर चिंतन किया और विश्वासों को याद दिलाया कि ख्रिस्त से मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 अगस्त को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: जब हम सुसमाचार पाठ सुनते हैं तो हम अक्सर यीशु के चमत्कारों को सुनते हैं। वे ऐसे कार्य हैं जो हमारे प्रति उनके विशेष समर्पण को दिखाते हैं, अर्थात उस मुक्ति को जिसको वे दुनिया में लाते हैं। प्रभु को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जीवन को अर्थ प्रदान करता और बुराई एवं पाप से मुक्ति दिलाता है। चमत्कारों के गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, अंधे को दृष्टि एवं बहरे को श्रवण देकर ख्रिस्त न केवल चमत्कारी कार्य संपन्न करते बल्कि सभी के लिए घोषणा करते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस तरह आज का सुसमाचार पाठ इस बात की गवाही देता है कि यीशु न केवल उन लोगों को अर्थ प्रदान करते जिनमें इसकी कमी है, बल्कि वे हमें भी अच्छी चीजों से भर देते हैं। बहरा जो फिर सुनने लगा, यीशु उसके लिए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। अंधा जो फिर देखने लगा, उसके लिए मुक्ति के महान कार्य को प्रकट करते हैं जो उसके लिए किया गया है। उसी तरह यीशु उन लोगों को भोजन देते हैं जो भूखे हैं। निर्जन प्रदेश अर्थात जब हम आवश्यकता में हैं, तो यीशु जीवन की रोटी हैं। रोटी का चमत्कार हमें दिखाता है कि यीशु के साथ मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये संख्या दिखाता है कि ईश्वर का दान सभी के लिए है और हमारे लिए उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। संत पापा ने कहा,
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: प्यारे मित्रों, ख्रिस्त सचमुच मानवता की भूख मिटाते हैं, सत्य और जीवन की हमारी भूख। उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि जब बांटा जाता है तो कुछ भी बेकार नहीं जाता। दूसरी ओर जमा करना और बर्बादी एक ही बुराई के दो पहलू हैं। लालच आत्मा की वह बीमारी है जिससे अर्थ खोने लगता है, क्योंकि समृद्धि व्यक्ति को मतवाला बना देता है उस हद तक कि वह उन लोगों को भूल जाता जो भूख से बिलखते और प्यास से रोते हैं, और इसलिए सड़ती हुई चीजों की अमीरी के सामने उन लोगों के फैले हुए हाथ खड़े हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों के जले हुए घर जिनके पास शांति नहीं है। संत पापा ने दुनिया की वर्तमान स्थिति की याद करते हुए कहा, युद्ध के निर्जन प्रदेश एवं अहंकार का सामना करते हुए हम प्रभु की दया को देखें, जो स्वर्ग की ओर नजर उठाते, धन्यवाद की प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और उन्हें अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे भीड़ को बांट सकें। संत पापा ने कहा, उदारता के इस चमत्कार में हम यीशु के कार्यों की विशेषता को पाते हैं जिनकी पराकाष्ठा अंतिम ब्यारी में है, जब ईश्वर के बेटे ने मानव जाति में हमारे भाई के रूप में अपनी जान दे दी। जब हम यूखरिस्त की कृपा को ग्रहण करते हैं तो आइए हम अपने रोज के कामों में इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए खुद को तैयार करें, जिसकी शुरुआत परिवार और दोस्तों के साथ खाने की मेज पर भोजन को आशीष देते हुए होती है। यीशु के साथ छुट्टियां भी भाईचारे की शांति का समय बन सकती है अगर हम जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, हम कुमारी मरियम हमारी प्यारी माता से प्रार्थना करें कि वे हमें उदारता में बढ़ने में मदद करें ताकि कोई भी अपने दैनिक आहार से वंचित ना रहे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit de Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने देश विदेश की विभिन्न घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सेउटा की खतरनाक हालत देखकर परेशान हूँ। स्पेन का स्वायत्त शहर सेउटा, जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है और मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है, एक बड़े आप्रवासन संकट का सामना कर रहा है। विगत दिनों हजारों लोगों ने मोरक्को के इस इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिससे जगहें भर गई हैं, जिससे स्पेन को और सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इस संकट एवं समुद्र के रास्ते पार करने की खतरनाक कोशिशों के बीच कम से कम 67 लोगों की जान चली गई। रॉयटर के मुताबिक अधिकांश लोग समुद्र में डूब गए या अफरा तफरी के दौरान कुचल कर मर गए। संत पापा ने कहा, अफ्रीका की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शांति, स्थिरता और न्याय का हल मिल सके। उन्होंने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म हों और झगड़ों का कूटनीतिक हल मिल सके। आइए हम दुश्मनी के शिकार सभी लोगों को याद करें, खासकर सबसे कमजोर और सबसे लाचार लोगों को, बच्चे, बूढ़े और बीमार। प्रभु उन लोगों को आराम दें जो परेशान हैं, और उन लोगों को आशीष प्रदान करें जो सहायता और सांत्वना लाने के काम करते हैं। इसके बाद संत पापा ने सप्ताह के अंत में प्रायश्चित दंड मोचन के अवसर को याद किया और विश्वासियों को इस महान आध्यात्मिक वरदान के लिए धन्यवाद देने और इसे संजोए रखने के लिए आमंत्रित किया। इन दिनों को असीसी के दंडमोचन के लिए समर्पित किया गया है, जो पारंपरिक रूप से असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिसे पाप स्वीकार संस्कार एवं पौत्र मिस्सा में भाग लेकर तथा किसी पल्ली या फ्रांसिस्कन चर्च में जाकर विश्वास के धर्मसार प्रभु की विनती, प्रणाम मरियम और संत पापा एवं उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करके प्राप्त किया जा सकता है। पोप ने कहा, यह दिन असीसी की माफी के रूप में मनाए जाते हैं। संत फ्रांसिस को यह दंडमोचन 1216 को पोप होनोरिस तृतीय से मिला था, या उन्हें तब मिला था जब उन्होंने पोचुंकुला में प्रार्थना करते हुए येसु और मरियम को दूतों से घिरा हुआ देखा था। संत पापा ने कहा,
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono.
0: आइए हम इस महान वरदान के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें और इसे संभाल कर रखें, खासकर असीसी के संत फ्रांसिस की 800वीं वर्षगांठ पर, जिसकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1226 को पोचुंकुला में हुई थी। असीसी की क्षमा 1216 से ही हो रही है, जब येसु ख्रिस्त, कुंवारी मरियम और दूत संत फ्रांसिस के सामने छोटे से प्रार्थनालय में आए थे। यह चैपल फ्रांसिस ने इटली के शहर असीसी में बनवाया था। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi, romani pellegrini, provenienti da vari paesi.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। असीसी के प्रायर लुका डे पास्क्वाले, जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक उम्ब्रियन शहर में होने वाले फ्रांसिस्कन युवा मीटिंग कार्यक्रम के संयोजकों में से एक हैं, ने वाटिकन मीडिया को इन दिनों के प्रोग्राम और मकसद के बारे में बताया, जो दूतों की मरिया महागिरजा घर में संत पापा लियो 14वें के मिसा समारोह के साथ खत्म होगा। गुरुवार 4 अगस्त को असीसी में संत पापा लियो 14वें का प्रेरितिक दौरा युवाओं के लिए खास तौर पर रखी गई 4 दिनों की सभाओं, बहसों और कार्यशालाओं का अंत करेगा। संत पापा उनके सवालों का जवाब देंगे और पौत्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे एक औसत जिंदगी से समझौता न करें, जैसा उन्होंने एक साल पहले तोरवेरगाता में युवा जुबली के दौरान किया था। फ्रायर लुका ने बताया कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक 18 से 33 साल के हजारों यूरोपियन युवाओं को संत फ्रांसिस के शहर में लाएगा, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह महसूस करना कितना दुखद है कि उन्हें अक्सर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती है और इस उम्र में उन्होंने पहले ही सपने देखना बंद कर दिया है। 38 साल के फ्रायर माइनर ने वाटिकन मीडिया को बताया कि संत पापा लियो 14वें जैसे किसी बड़ी हस्ती से मतलब की बातें सुनना कितना जरूरी है, जो युवाओं और जिंदगी की उस भरपूरता के बीच पुल बना सके जिसे वे हमेशा समझ नहीं पाते, और संत फ्रांसिस जैसे पवित्र बेचैनी के मॉडल को देखना कितना मददगार है, जो आज के युवाओं से समकालीन के तौर पर बात कर सकते हैं। उधर बोस्निया और हर्जेगोविना के तीर्थालय में आयोजित युवा समारोह ब्लादी फेस्ट के उद्घाटन के लिए राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक संदेश में संत पापा लियो 14वें ने युवाओं से क्षणिक खुशी के भ्रम में न आने का आग्रह किया। आसान और तुरंत खुशी के वादे आकर्षक होते हैं, लेकिन वे अक्सर कोई गहरी छाप छोड़े बिना फीके पड़ जाते हैं। जो बचता है वह गहरे सवाल, इंसान के दिल में रहने वाली चिंताएं और हमेशा रहने वाली खुशी की चाहत। इन्हीं कमजोरियों से ईश्वर से मिलकर विश्वास का एक असली सफर शुरू हो सकता है। वे हर दिल को शांत करते हैं और हमेशा नई शुरुआत की ताकत देते हैं। यही वह संदेश है जो संत पापा लियो 14वें ने 73 देशों के युवाओं को दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा समारोह के उद्घाटन के लिए मेजुगोरिया में एकत्रित हुए थे। 1989 से शुरू हुआ यह समारोह हर साल यूखरिस्तीय समारोह सेंट जेम्स पल्ली के बाहरी वेदी में होता है। उधर ईरान पर अमेरिका का हमला, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया गया था, होने वाला माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर के कहने पर इसे वापस ले लिया, जिन्होंने बातचीत से हल निकालने की बात कही थी। पार्टियों के बीच बातचीत आज फिर से शुरू होगी और सबसे पहले हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और फिर देश के परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाशिंगटन और तेहरान 17 जून को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह वह ज्ञापन है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समझौते के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में है, जिसे मध्यस्थ संदर्भित करना चाहते हैं, विशेष रूप से हुर्मुज के मुद्दे पर। युद्ध से पहले सभी जहाज स्वतंत्र रूप से पारगमन कर सकते थे, फिर ईरान ने संघर्ष के दौरान इसे बंद कर दिया और नियंत्रण बनाए रखने और टोल एकत्र करने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय इस्लामी हथियारबंद दलों के खिलाफ प्रदर्शन को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में पुलिस अधिकारियों और आम लोगों समेत कम से कम 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार हमलावर ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर रोके जाने पर उसने बिल्डिंग के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने विस्फोटक जैकेट में धमाका कर दिया। मरने वालों में कम से कम 5 पुलिस अधिकारी शामिल थे।
राष्ट्रपति आशिफ अल जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। उधर रविवार 2 अगस्त को सीबीसीआई बायोएथिक्स फोरम द्वारा कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेस मांडर में कैथोलिक बायोएथिक्स प्रसार कार्यशाला को सीसीबीआई बायोएथिक्स फोरम के डायरेक्टर फादर चार्ल्स डेविड ने संचालित किया। यह फोरम देश भर के कैथोलिक बायोएथिक्स को बढ़ावा देने और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हॉस्पिटल एथिक्स कमेटियों की स्थापना को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक फादर सीजो कुनेल ने प्रोफेशनल और क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया जो काबिलियत को दया, ईमानदारी और सुसमाचार के मूल्यों के साथ मिलाते हैं। सत्र में मानव गरिमा, नैतिक फैसले लेने, प्रजनन नैतिकता, जीवन के अंतिम क्षणों में देखभाल, सामाजिक न्याय और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल के मिशन पर कैथोलिक शिक्षा की जांच की गई। आपसी बहस, चर्चाओं और केस स्टडीज से प्रतिभागियों को असल जिंदगी के स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिली, जिसमें खासतौर पर करुणामय एवं मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और आज की बायोएथिकल चुनौतियों पर सवाल उठाए। कई लोगों ने व्यवहारिक केस आधारित तरीके की तारीफ की और अपनी भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल मिनिस्ट्री में मानव गरिमा की रक्षा करने, करुणामय देखभाल देने और नैतिक समझदारी दिखाने के लिए एक नई प्रतिबद्धता दिखाई। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरिना एमएमएस के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला खत्म हुई और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे

0: नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
2: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदवे का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसे 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा, कलिसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है, जहां वह अपने विशेषकर बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को अग्रसर होती है और वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करते हुए उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलिसिया की यह सहभागिता उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इसी कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचिता के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलिसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रिया में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है, और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्वमय समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, इतिहास के विशेष समय में मानवता के संग चलने हेतु कलिसिया का बुलावा और उत्तरदायित्व उसे इस बात को पहचानने में मदद करती है कि पृथ्वी की सच्चाइयां स्वयं अपने में एक चरित्र और क्रम को वहन करती हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा ने इस सिद्धांत को एक विशेष सुनिश्चितता में व्यक्त करते हुए विश्व प्रेरितिक पत्र गौडियम एट स्पेस, जिसकी 60वीं सालगिरह की याद करते हुए 7 दिसंबर 2025 को समारोह मनाया गया, हमें कहता है, अगर दुनियावी मामलों की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि बनाई गई चीजें और समाज खुद अपने नियम और मूल्यों का आनंद उठाते हैं, तो आजादी की मांग पूरी तरह से सही है। इस बात की सुदृढ़ता हमें यह दिखलाती है कि सृष्टि अपने में एक वास्तविक सुंदरता को वहन करती है, जिसे हमें मानवीय दृष्टि में सुरक्षित रखने, सृजित करने और उसे पूर्णता तक ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कलिसिया हमें अपने को देती है, जो हमें सच्चाई को और अधिक गहराई से परिभाषित करने हेतु मदद करती है। वह उन चुनौतियों को अपनी कोमलता में सुदृढ़ता प्रदान करती है, जो हर मानवीय सम्मान, समुदायों की एकता और सबों की भलाई को बढ़ावा देती है। कलिसिया इस भांति विश्व के संग खड़ी होती है, उसके ऊपर अपने को थोपे बिना, जिससे न्याय और शांति की प्रतिज्ञा, जिसे पवित्र आत्मा सदैव मानव के हृदय में पोषित करते हैं, जो मानव की हर एक कोशिश में फलहित हो। श्रोताओं, इस बात को स्वीकारते हुए कि विकसित होते इतिहास में ईश्वर नर और नारियों की स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसियाई समुदाय और राजनीतिक समुदाय के बीच स्पष्ट अंतर को सुदृढ़ करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि हर एक अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में कार्य करे, विश्व में कलिसिया की उपस्थिति को हम नागर समाज और लोक संस्थानों के बीच आपसी संबंध में भी व्यक्त होता पाते हैं। अपने को इन संस्थानों से संयुक्त करते हुए कलिसिया सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को महत्व देती और उनके विशेष उत्तरदायित्वों का सम्मान करती है। वह उन सारी बातों को प्रोत्साहित करती है जो व्यक्तिगत रूप में लोगों के हित और समाज के ताने बाने को मजबूत बनाए रखते हैं। कलिसिया राज्य से संबंधित बातों को संचालित करने का दावा नहीं करती है, इसके विपरीत यह उन लोगों का सम्मान करती है जो जनहित में कार्य करते हैं और नागर संस्थानों के उत्तरदायित्वों को समाज के अंदर सुदृढ़ता में स्वीकार करते हैं। वहीं कलिसिया की प्रेरिताई उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह सचमुच दुख से पीड़ित नर और नारियों के प्रति अपनी आवाज उठाए। यह नजदीकी सिविल संस्थानों की जगह लेने के इरादे से नहीं आती और ना ही उनके काम की छिपी हुई आलोचना से, बल्कि इसकी उत्पत्ति सुसमाचार की करुणा से होती है, जो कलिसिया को घायल मानवता के लिए अपने को प्रेरित करती है। जब कभी भी वे अपने को बृहद दुख का शिकार पाते हैं, जब कलिसिया इन बातों पर हस्तक्षेप करती है, तो वह ऐसा भले सामारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए करती है, जो समझदारी और निकटता में होती है, उस सचेतना में कि जो चीज अति जरूरत से पैदा होती है वह नियम नहीं बन सकती, न ही संस्थागत उत्तरदायित्वों को नागर समुदाय की जिम्मेदारियों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, इन दो आयामी स्वीकृति दुनिया के वास्तविकताओं की स्वायत्तता और कलिसिया तथा राजनीति क्षमता के बीच अंतर से शुरू हमारे लिए इस बात की स्पष्टता लाती है जो द्वितीय वैटिकन महासभा के द्वारा कलिसिया के लिए विश्व के संबंध में स्थापित किया गया है। गाउडियम एट स्पेस हमें इस बात की याद दिलाती है कि यह सारी ईश प्रजा का कार्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे सुने और वर्तमान समय की बहुत सारी आवाजों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें ईश वचन के प्रकाश में परिभाषित करें, जिससे प्रकट की गई सच्चाई गहराई में प्रवेश करे, उसे बेहतर रूप में समझा और उसे उचित रूप में प्रकट किया जा सके। बहुत सारी आवाजों को सुनना अपने में केवल एक सामाजिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक आत्म परख की मांग करती है। पवित्र आत्मा से निर्देशित ईश प्रजा संस्कृति और सामाजिक परिवर्तनों में इस बात को पहचानती है कि वे दोनों ख्रीस्त की उपस्थिति की निशानियां हैं जो हमारे बीच आती और इतिहास को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। इस भांति प्रकट किया गया सत्य का मूल सार अपने में नहीं बदलता है, लेकिन यह अपने में स्पष्ट होता और ठोस चीजों के चुनाव में एक मापदंड बनता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन हेतु एक मार्ग जो संरचनाओं के सुधार को बढ़ावा देता और सामाजिक जीवन में सुसमाचार का साक्ष्य नए तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इतिहास इस भांति एक उस स्थल के रूप में समझी जाती है जहां कलिसिया अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार में व्याप्त मानवीय शक्ति से शिक्षित होने देती है और वह हर व्यक्ति की गरिमा और सभी लोगों की भलाई के लिए खुद अपने शिक्षण का विकास करना सीखती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने किगाली में आयोजित सिग्नेस विश्व सम्मेलन को एकता संदेश भेजा और प्रतिभागियों से उम्मीद जताई कि उनकी बातचीत इस बात को सुनिश्चित करने में मददगार होगी कि संचार मानव परिवार की भलाई के लिए काम करें। कार्डिनल परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एकता संदेश में पोप लियो 14वें ने अफ्रीका के किगाली में पहली बार हो रहे सिग्नेस विश्व सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पोप ने कार्तिक मीडिया पेशेवरों से एक ऐसी संस्कृति में योगदान देने की अपील की जो मेल जोल शांति और पर्यावरण सुरक्षा के मूल्यों को दर्शाता हो। अफ्रीकी देश में सिग्नेस विश्व सम्मेलन 3 से 8 अगस्त तक आयोजित है, जिसके प्रतिभागियों से पोप ने कहा, हमारे युग को अक्सर डिजिटल युग कहा जाता है क्योंकि हमारा अधिकांश जीवन डिजिटल तकनीक और इंटरनेट से संचालित होता है। वास्तव में अपने विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास में पोप ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन संचार केवल सूचना का प्रसारण नहीं बल्कि एक संस्कृति का निर्माण है, क्योंकि इसमें लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को आकार देने की शक्ति है और इस तरह सामूहिक विवेक पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में पोप को भरोसा है कि सांस्कृतिक सद्भाव और पर्यावरण कल्याण के लिए डिजिटल संचार विषय पर सिग्नेस प्रतिभागियों के विचार उन संचार रणनीतियों और उपकरणों को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करेंगे जो सत्य की खोज और मानवीय गरिमा के सम्मान से प्रेरित हैं। इस तरह उनका कार्य एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जो साम्य शांति और पर्यावरण प्रबंधन के सुसमाचारी मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। संत पापा ने सभी प्रतिभागियों को कलीसिया की माता मरियम की मध्यस्थता को सुपुर्द करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनकी कोशिशें हमेशा फल लाएंगी। अंत में संत पापा ने सभी पर प्रभु की प्रज्ञा एवं सामर्थ्य की कामना करते हुए अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया है। पोप लियो के संदेश पढ़ने के तुरंत बाद वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाउलो रूफिनी का एक वीडियो संदेश पौत्र परिवार होटल के हॉल में दिखाया गया जहां यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रीफेक्ट ने सिग्नेस विश्व सम्मेलन के लिए शुक्रिया अदा किया जो हमें ऐसी चीजों की याद दिलाती है जिससे हमारा डिजिटल जगत अक्सर भूल जाता है कि संचार तकनीक से शुरू नहीं होता बल्कि लोगों से होता है। प्रीफेक्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इस मुश्किल दौर में जिसको अक्सर युद्ध ध्रुवीकरण फेक न्यूज़ और बढ़ते अविश्वास से पहचाना जाता है, यह एक ऐसा समय भी है जब पहली बार हमारे पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रभावशाली उपकरण हैं। डॉक्टर रूफिनी ने कहा, फिर भी एक सरल डिजिटल संपर्क सहभागिता पर आधारित रिश्ते जैसा नहीं है। हम इसके लेखक हैं और हमें लेखक ही रहना चाहिए, जैसा कि पोप फ्रांसिस और फिर पोप लियो ने भी कहा है। हमें मानव की सुरक्षा करने, मानव की आवाज़ों और चेहरों को बचाकर रखने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब उन्हें किसी संग्रहालय में रखना नहीं है बल्कि उनकी सक्रिय देखभाल करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बातचीत के लिए जगह बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी हमेशा इंसान की सेवा में बनी रहे। प्रीफेक्ट ने कहा, यह एक मुश्किल काम है और इसे पूरा करने के लिए संचार के अच्छे तरीकों और भरोसेमंद जानकारी को बढ़ाने एवं समर्थन देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का 3 अगस्त 2026 को मपुटो के अस्पताल में निधन हो गया। वे शाय के सेवानिवृत्त मध्यक्ष और मोजाम्बिक की कार्तिक कलीसिया के इतिहास में दूसरे कार्डिनल थे। वे 98 साल के थे। वे कलीसिया की सेवा का एक लंबा इतिहास छोड़ गए जिसमें शाय धर्म प्रांत में 28 सालों तक सेवा दी। वैटिकन रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में मबूटो के सेवानिवृत्त महाधर्म अध्यक्ष एवं शाय के प्रेरितिक प्रशासक डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो ने कार्डिनल की विरासत के बारे बात की। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो के अनुसार कार्डिनल की दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इलाज के लिए समय नहीं मिला। शाय के प्रेरितिक प्रशासक ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, इलाज के लिए समय नहीं मिला इसलिए वे चले गए, पिता के पास जाने के लिए चले गए।
कार्डिनल के निधन के बाद महाधव मदर्श फ्रांचेस्को ने कलीसिया से विश्वास एवं आशा में मजबूत रहने की अपील की है। उन्होंने 28 साल तक शायदम प्रांत में उनकी सेवा को याद किया। मापुटो के सेवानिवृत्त महाधव मदर्श का मानना है कि कार्डिनल जूलियो लांगा के विश्वास, आशा एवं उदारता के माध्यम से उनके कामों को जारी रखना है, ताकि प्रेम, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति खुलेपन वाला समाज बने। महाधव मदर्श फ्रांचेस्को के लिए कार्डिनल की विरासत उन सभी ईसाइयों के लिए हिम्मत का काम करेगी जो अपने विश्वास की यात्रा पर हैं। कार्डिनल जूलियो का अंतिम संस्कार 6 अगस्त को मपूटो के महागिरजा घर में सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग के साथ होगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शाय ले जाया जाएगा, जहां दोपहर में एक पौत्र मिस्सा होगा। 7 अगस्त को अलग अलग दलों की प्रार्थनाएं होंगी। उसके अंत में पुनः क्रिस्त्याग होगा। 8 अगस्त को पार्थिव शरीर को शोगोइने में लूत की माता मरियम तीर्थस्थल लिया जाएगा, जहाँ सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग होगा और उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। 14 फरवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा मोजाम्बिक में कार्तिक कलीसिया के एक जाने माने व्यक्ति थे। 27 अक्टूबर 1927 को गजा प्रांत में जन्मे कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का पुरोहिताभिषेक 1957 में हुआ था। लगभग 3 दशकों तक धर्म अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के बाद वे 2004 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 2027 में सियोल में होने वाले विश्व युवा दिवस के एक साल पहले इसका आधिकारिक गीत जारी किया गया। यह एक ऐसी धुन है जो युवा कैथोलिकों की पूरी पीढ़ी के मन में गूंजेगी। अगले विश्व युवा दिवस के आधिकारिक गीत को कार्यक्रम के ठीक एक साल पहले जारी किया गया। यह गीत कैथोलिक युवाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह के लिए माहौल तैयार करेगा, जो 3 से 8 अगस्त 2027 को सियोल में होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदवे का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसे 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा, कलिसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है, जहां वह अपने विशेषकर बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को अग्रसर होती है और वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करते हुए उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलिसिया की यह सहभागिता उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इसी कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचिता के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलिसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रिया में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है, और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्वमय समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, इतिहास के विशेष समय में मानवता के संग चलने हेतु कलिसिया का बुलावा और उत्तरदायित्व उसे इस बात को पहचानने में मदद करती है कि पृथ्वी की सच्चाइयां स्वयं अपने में एक चरित्र और क्रम को वहन करती हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा ने इस सिद्धांत को एक विशेष सुनिश्चितता में व्यक्त करते हुए विश्व प्रेरितिक पत्र गौडियम एट स्पेस, जिसकी 60वीं सालगिरह की याद करते हुए 7 दिसंबर 2025 को समारोह मनाया गया, हमें कहता है, अगर दुनियावी मामलों की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि बनाई गई चीजें और समाज खुद अपने नियम और मूल्यों का आनंद उठाते हैं, तो आजादी की मांग पूरी तरह से सही है। इस बात की सुदृढ़ता हमें यह दिखलाती है कि सृष्टि अपने में एक वास्तविक सुंदरता को वहन करती है, जिसे हमें मानवीय दृष्टि में सुरक्षित रखने, सृजित करने और उसे पूर्णता तक ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कलिसिया हमें अपने को देती है, जो हमें सच्चाई को और अधिक गहराई से परिभाषित करने हेतु मदद करती है। वह उन चुनौतियों को अपनी कोमलता में सुदृढ़ता प्रदान करती है, जो हर मानवीय सम्मान, समुदायों की एकता और सबों की भलाई को बढ़ावा देती है। कलिसिया इस भांति विश्व के संग खड़ी होती है, उसके ऊपर अपने को थोपे बिना, जिससे न्याय और शांति की प्रतिज्ञा, जिसे पवित्र आत्मा सदैव मानव के हृदय में पोषित करते हैं, जो मानव की हर एक कोशिश में फलहित हो। श्रोताओं, इस बात को स्वीकारते हुए कि विकसित होते इतिहास में ईश्वर नर और नारियों की स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसियाई समुदाय और राजनीतिक समुदाय के बीच स्पष्ट अंतर को सुदृढ़ करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि हर एक अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में कार्य करे। विश्व में कलिसिया की उपस्थिति को हम नागर समाज और लोक संस्थानों के बीच आपसी संबंध में भी व्यक्त होता पाते हैं। अपने को इन संस्थानों से संयुक्त करते हुए कलिसिया सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को महत्व देती और उनके विशेष उत्तरदायित्वों का सम्मान करती है। वह उन सारी बातों को प्रोत्साहित करती है जो व्यक्तिगत रूप में लोगों के हित और समाज के ताने बाने को मजबूत बनाए रखते हैं। कलिसिया राज्य से संबंधित बातों को संचालित करने का दावा नहीं करती है, इसके विपरीत यह उन लोगों का सम्मान करती है जो जनहित में कार्य करते हैं और नागर संस्थानों के उत्तरदायित्वों को समाज के अंदर सुदृढ़ता में स्वीकार करते हैं। वहीं कलिसिया की प्रेरिताई उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह सचमुच दुख से पीड़ित नर और नारियों के प्रति अपनी आवाज उठाए। यह नजदीकी सिविल संस्थानों की जगह लेने के इरादे से नहीं आती और ना ही उनके काम की छिपी हुई आलोचना से, बल्कि इसकी उत्पत्ति सुसमाचार की करुणा से होती है, जो कलिसिया को घायल मानवता के लिए अपने को प्रेरित करती है। जब कभी भी वे अपने को बृहद दुख का शिकार पाते हैं, जब कलिसिया इन बातों पर हस्तक्षेप करती है, तो वह ऐसा भले सामारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए करती है, जो समझदारी और निकटता में होती है, उस सचेतना में कि जो चीज अति जरूरत से पैदा होती है वह नियम नहीं बन सकती, ना ही संस्थागत उत्तरदायित्वों को नागर समुदाय की जिम्मेदारियों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, इन दो आयामी स्वीकृति दुनिया के वास्तविकताओं की स्वायत्तता और कलिसिया तथा राजनीति क्षमता के बीच अंतर से शुरू हमारे लिए इस बात की स्पष्टता लाती है जो द्वितीय वैटिकन महासभा के द्वारा कलिसिया के लिए विश्व के संबंध में स्थापित किया गया है। गाउडियम एट स्पेस हमें इस बात की याद दिलाती है कि यह सारी ईश प्रजा का कार्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे सुने और वर्तमान समय की बहुत सारी आवाजों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें ईश वचन के प्रकाश में परिभाषित करें, जिससे प्रकट की गई सच्चाई गहराई में प्रवेश करे, उसे बेहतर रूप में समझा और उसे उचित रूप में प्रकट किया जा सके। बहुत सारी आवाजों को सुनना अपने में केवल एक सामाजिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक आत्म परख की मांग करती है। पवित्र आत्मा से निर्देशित ईश प्रजा संस्कृति और सामाजिक परिवर्तनों में इस बात को पहचानती है कि वे दोनों ख्रीस्त की उपस्थिति की निशानियां हैं, जो हमारे बीच आती और इतिहास को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। इस भांति प्रकट किया गया सत्य का मूल सार अपने में नहीं बदलता है, लेकिन यह अपने में स्पष्ट होता और ठोस चीजों के चुनाव में एक मापदंड बनता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन हेतु एक मार्ग जो संरचनाओं के सुधार को बढ़ावा देता और सामाजिक जीवन में सुसमाचार का साक्ष्य नए तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इतिहास इस भांति एक उस स्थल के रूप में समझी जाती है जहां कलिसिया अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार में व्याप्त मानवीय शक्ति से शिक्षित होने देती है और वह हर व्यक्ति की गरिमा और सभी लोगों की भलाई के लिए खुद अपने शिक्षण का विकास करना सीखती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने किगाली में आयोजित सिग्नेस विश्व सम्मेलन को एकता संदेश भेजा और प्रतिभागियों से उम्मीद जताई कि उनकी बातचीत इस बात को सुनिश्चित करने में मददगार होगी कि संचार मानव परिवार की भलाई के लिए काम करें। कार्डिनल परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एकता संदेश में पोप लियो चौदहवें ने अफ्रीका के किगाली में पहली बार हो रहे सिग्नेस विश्व सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पोप ने कार्तिक मीडिया पेशेवरों से एक ऐसी संस्कृति में योगदान देने की अपील की जो मेल जोल, शांति और पर्यावरण सुरक्षा के मूल्यों को दर्शाता हो। अफ्रीकी देश में सिग्नेस विश्व सम्मेलन 3 से 8 अगस्त तक आयोजित है, जिसके प्रतिभागियों से पोप ने कहा, हमारे युग को अक्सर डिजिटल युग कहा जाता है क्योंकि हमारा अधिकांश जीवन डिजिटल तकनीक और इंटरनेट से संचालित होता है। वास्तव में अपने विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास में पोप ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन संचार केवल सूचना का प्रसारण नहीं बल्कि एक संस्कृति का निर्माण है, क्योंकि इसमें लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को आकार देने की शक्ति है और इस तरह सामूहिक विवेक पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में पोप को भरोसा है कि सांस्कृतिक सद्भाव और पर्यावरण कल्याण के लिए डिजिटल संचार विषय पर सिग्नेस प्रतिभागियों के विचार उन संचार रणनीतियों और उपकरणों को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करेंगे जो सत्य की खोज और मानवीय गरिमा के सम्मान से प्रेरित हैं। इस तरह उनका कार्य एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जो साम्य, शांति और पर्यावरण प्रबंधन के सुसमाचारी मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। संत पापा ने सभी प्रतिभागियों को कलीसिया की माता मरियम की मध्यस्थता को सुपुर्द करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनकी कोशिशें हमेशा फल लाएंगी। अंत में संत पापा ने सभी पर प्रभु की प्रज्ञा एवं सामर्थ्य की कामना करते हुए अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया है। पोप लियो के संदेश पढ़ने के तुरंत बाद वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाउलो रूफिनी का एक वीडियो संदेश पौत्र परिवार होटल के हॉल में दिखाया गया जहां यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रीफेक्ट ने सिग्नेस विश्व सम्मेलन के लिए शुक्रिया अदा किया जो हमें ऐसी चीजों की याद दिलाती है जिससे हमारा डिजिटल जगत अक्सर भूल जाता है कि संचार तकनीक से शुरू नहीं होता बल्कि लोगों से होता है। प्रीफेक्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इस मुश्किल दौर में जिसको अक्सर युद्ध, ध्रुवीकरण, फेक न्यूज और बढ़ते अविश्वास से पहचाना जाता है, यह एक ऐसा समय भी है जब पहली बार हमारे पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रभावशाली उपकरण है। डॉक्टर रूफिनी ने कहा, फिर भी एक सरल डिजिटल संपर्क सहभागिता पर आधारित रिश्ते जैसा नहीं है। हम इसके लेखक हैं और हमें लेखक ही रहना चाहिए, जैसा कि पोप फ्रांसिस और फिर पोप लियो ने भी कहा है। हमें मानव की सुरक्षा करने, मानव की आवाजों और चेहरों को बचा कर रखने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब उन्हें किसी संग्रहालय में रखना नहीं है बल्कि उनकी सक्रिय देखभाल करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बातचीत के लिए जगह बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी हमेशा इंसान की सेवा में बनी रहे। प्रीफेक्ट ने कहा, यह एक मुश्किल काम है और इसे पूरा करने के लिए संचार के अच्छे तरीकों और भरोसेमंद जानकारी को बढ़ाने एवं समर्थन देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का 3 अगस्त 2026 को मपुटो के अस्पताल में निधन हो गया। वे शाई शाई के सेवानिवृत्त मध्यक्ष और मोजाम्बिक की कार्तिक कलीसिया के इतिहास में दूसरे कार्डिनल थे। वे 98 साल के थे। वे कलीसिया की सेवा का एक लंबा इतिहास छोड़ गए जिसमें शाय शैधम प्रांत में 28 सालों तक सेवा दी। वैटिकन रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में मबूटो के सेवानिवृत्त महाधर्मदर्श एवं शाय शाय के प्रेरितिक प्रशासक डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो ने कार्डिनल की विरासत के बारे बात की। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो के अनुसार कार्डिनल की दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इलाज के लिए समय नहीं मिला। शाय शाय के प्रेरितिक प्रशासक ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, इलाज के लिए समय नहीं मिला इसलिए वे चले गए, पिता के पास जाने के लिए चले गए। कार्डिनल

निधन के बाद महाता मदर्स फ्रांचेस्को ने कलीसिया से विश्वास एवं आशा में मजबूत रहने की अपील की है। उन्होंने 28 साल तक शायदम प्रांत में उनकी सेवा को याद किया। मापुटो के सेवानिवृत्त महाता मदर्स का मानना है कि कार्डिनल जूलियो लांगा के विश्वास, आशा एवं उदारता के माध्यम से उनके कामों को जारी रखना है, ताकि प्रेम, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति खुलेपन वाला समाज बने। महाता मदर्स फ्रांचेस्को के लिए कार्डिनल की विरासत उन सभी ईसाइयों के लिए हिम्मत का काम करेगी जो अपने विश्वास की यात्रा पर हैं। कार्डिनल जूलियो का अंतिम संस्कार 6 अगस्त को मापुटो के महागिरजाघर में सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग के साथ होगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शाय ले जाया जाएगा, जहां दोपहर में एक पौत्र मिस्सा होगा। 7 अगस्त को अलग अलग दलों की प्रार्थनाएं होंगी। उसके अंत में पुनः क्रिस्त्याग होगा। 8 अगस्त को पार्थिव शरीर को शोगोइने में लूथ की माता मरियम तीर्थस्थल लिया जाएगा, जहाँ सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग होगा और उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। 14 फरवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा मोजाम्बिक में कार्तिक कलीसिया के एक जाने माने व्यक्ति थे। 27 अक्टूबर 1927 को गजा प्रांत में जन्मे कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का पुरोहिताभिषेक 1957 में हुआ था। लगभग 3 दशकों तक धर्माध्यक्ष के रूप में सेवा देने के बाद वे 2004 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 2027 में सियोल में होने वाले विश्व युवा दिवस के एक साल पहले इसका आधिकारिक गीत जारी किया गया। यह एक ऐसी धुन है जो युवा कैथोलिकों की पूरी पीढ़ी के मन में गूंजेगी। अगले विश्व युवा दिवस के आधिकारिक गीत को कार्यक्रम के ठीक एक साल पहले जारी किया गया। यह गीत कैथोलिक युवाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह के लिए माहौल तैयार करेगा, जो 3 से 8 अगस्त 2027 को सियोल में होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।